भले ही दोस्तों इस गीत को इरशाद कामिल ने अभी लिखा है, मतलब कुछ दिन पहले, और शाश्वत ने यानी कि शाश्वत सचदेव ने संगीत से सजाया है, लेकिन हमारा जो रिश्ता है ये गहराइयों से भी ज़्यादा है। जी हाँ, बहुत सालों से गहरा है, और तभी तो हर रोज़ हम इसे कोई ना कोई आपके साथ आकर जुड़ते हैं और बताते हैं बहुत सारी बातें, ख़ास करके इस कार्यक्रम में जहाँ पर बोथ वेज यानी कि दोनों तरफ से बातें होती हैं, गपशप होती है। तो आज के कार्यक्रम, जी हाँ, आज के कार्यक्रम गपशप को लेकर हाजिर है आपकी वही पुरानी दोस्त पॉपी, और आपके साथ हमारा साथ बना रहेगा सुबह के 11 बजे तक। जी हाँ, 10 से 11 बजे तक का ये कार्यक्रम चलता रहेगा आपके साथ, ओनली ऑन 107 राइट नाउ, पॉप इज देयर विद यू। और अगला गीत हम आपको सुनाएंगे, बने रहिए, साथ रहिए, और हाँ, बहुत सी बातें भी होंगी। तो आपको हमारा हॉटलाइन नंबर मालूम है ना? जी हाँ भाई, इतना पुराना गहरा रिश्ता है, क्यों ना हो, अगर नहीं भी हो फिर भी हम बता देंगे 2243-7912। इस पर उंगलियों को दबाइए और हम तक पहुंच जाइए, ओनली ऑन 107 FM रेनबो पर।

अजब प्रेम की गजब कहानी से आपने सुना ये खूबसूरत गीत जिसे गाया था आतिफ असलम, नीरज श्रीधर और आलिशा ने। और लगता है हम तक कोई दोस्त पहुंच चुके हैं, देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, हमारे किसी दोस्त के आने की तो बात है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? शायद बात नहीं हो पा रही। कोई बात नहीं, कोशिश बनाए रखिए और हम चाहेंगे कि हमारे दोस्त हमसे जुड़े। हम जारी रखेंगे हमारे इस कार्यक्रम को, देखते हैं हमारे दोस्त कहाँ तक पहुँचे, क्योंकि हमारी जो हॉटलाइन की जो लाइट है वो तो ब्लिंक कर रही है, दैट मीन्स दोस्त है कहीं, लेकिन शायद कहीं गुम है। हम ढूंढ के उन्हें ज़रूर निकालेंगे।

0: हेलो
1: हेलो, कौन बोल रहे हैं?
0: गुड मॉर्निंग पॉपी जी।
1: गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
0: मैं मोनिरुद्दीन लश्कर बात कर रहा हूँ, दक्षिण साकराइल हावड़ा से।
1: हाँ मोनिरुद्दीन जी, बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आज के दिन?
0: आज सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा शुरुआत के लिए।
1: शुरुआत कहाँ हो रही है, हमारे दोस्त कहाँ पता नहीं गुम हो जा रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है शुरुआत और अच्छी होनी चाहिए थी। वैसे आज आपने अपने दिन की शुरुआत कैसे करी है वो बताइए
0: ना। मैं यही बोलना चाहता हूँ जी, आप जी गाना से शुरू किया और आप जी इतना खूबसूरत बातों से स्टार्ट किया, इसीलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ।
1: ओके, थैंक यू सो मच मनोरंजन जी। और बताइए कि क्या कुछ चल रहा है जिंदगी में, कुछ क्या बदलाव ला रहे हैं आप अपनी जिंदगी में? अब जैसे मौसम में भी बदलाव आ रहा है, बारिश हुई, तो अब आप पर्सनली अपने लाइफ में क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं?
0: मेरा लाइफ में यही बदलाना चाहता हूँ, मैं ज्यादा रात के सोता हूँ, ये मैं कमी होना चाहिए। और मैं ज्यादा मोबाइल यूज करता हूँ, वो तो चौक में इफेक्ट करता है, आंखों का रोशनी कमी हो जाता है, तो मोबाइल कुछ समय हो जाए देखना को हमारे सेहत के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं होता है।
1: मतलब आप अपना स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं, रात के खाने का समय में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
0: और हमारे सभी के लिए, परिवेश के लिए हमारे ज्यादा से ज्यादा गाछ लगाना चाहता हूँ। जैसे कि देखिए, हमारे तो उन्नयन होना चाहिए, क्योंकि उन्नयन के लिए गाछ तो करना होता है, लेकिन हम तब उसी क्षति पूर्ण कर सके तो हमारे उन्नयन भी चलेगा, हमारे परिवेश भी ठीक रहेगा।
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपकी बातें मैं समझ रही हूँ कि आप चाह रहे हैं कि हमारे जो एनवायरनमेंट में, हमारा जो परिवेश है, उसमें बदलाव आना चाहिए। मतलब बदलाव जो पॉजिटिव बदलाव। चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
0: पापी जी, हाँ, उन्नयन तो रुकना नहीं चाहिए, उन्नयन तो होना चाहिए
1: जी,
0: कल कल करना होना चाहिए, रास्ता भी होना चाहिए, लेकिन इसीलिए हमारे बहुत सारे क्षति पड़ना पड़ता है, जैसे कि घाट करना पड़ता है, पुकुर भरना पड़ता है, लेकिन इसका जो सोल्यूशन हमें करना चाहिए, हमारे सिटीजन को लेना चाहिए, जे हमारे ज्यादा से ज्यादा घाट बचाए,
1: बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल आपकी बातें, आपकी बातें हम सर्वोपरि रखते हैं। बहुत अच्छी बातें आपने कही कि तरक्की या बदलाव जो है वो हमारे अपने हिसाब से होना चाहिए। मतलब हम जो बिल्कुल छोटी से छोटी इकाई हैं, जो हम जो यूनिट्स हैं जो इस देश के, तो हमें अब पहले हमें अपने को बदलना पड़ेगा, हमें खुद सोचना चाहिए। ये किसी सरकार या किसी संस्था का काम नहीं है, छोटे छोटे बदलाव हमारी ज़िंदगी में आए, और इसके लिए हमें हमारी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है, सही में ये जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, यही हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाएगी, और मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। फिलहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए, आपको एक और खूबसूरत गीत मैं सुनाती हूँ, और मुझे उम्मीद है ये गीत भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुनते रहिए, साथ रहिए, बहुत सी बातें आपसे करनी है, और आपको भी हमारे साथ बने रहना है 11 बजे तक।

बातें और ढेर सारे गाने आप सुन रहे हैं नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, नॉनस्टॉप गपशप, नॉनस्टॉप गपशप 107 एफएम रेनबो पर, एफएम रेनबो पर।

बॉस फिल्म से आपने सुना ये खूबसूरत गीत अरिजीत सिंह और नीति मोहन की आवाज में। वैसे दोस्तों बात बिल्कुल सही है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता जिंदगी में, हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। और वैसे ही शहरों में रहने का जो आनंद है, जो प्रिविलेजेस जो हम एंजॉय करते हैं, हर किसी को नहीं मिलता। और जाहिर सी बात है कि जब हम शहर में रहते हैं तो इस शहर को साफ रखना, इस शहर को अच्छा बनाए रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करना हमारा काम है। और एक खास बात, जब शहर की बात चली है तो आपको बताना चाहेंगे कि शहरों में सड़क के ऊपर बिजली की तारों का जो जाल बना रहता है उससे कई बार परेशानियों को झेलना पड़ता है। जी हाँ, खास करके तेज बारिश और आंधी तूफान के दौरान तार टूटने या नीचे लटकने से दुर्घटनाओं का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। सड़कों के ऊपर झूलते बिजली की तारें अब धीरे धीरे अतीत का हिस्सा बनने वाली हैं। जी हाँ, पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 6 शहरों में बिजली वितरण व्यवस्था को और भी आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इन शहरों में ओवरहेड बिजली नेटवर्क को हटाकर भूमिगत यानी कि जमीन के नीचे केबल बिछाने की योजना तैयारी की जा रही है। पहले चरण के लिए कुछ शहरों को लिया गया है, उनमें से कांथी, एग्रा, जलपाईगुड़ी, बालूरघाट, अलीपुर द्वार और सिउड़ी को चुना गया है। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि 6 शहरों में शुरू होने वाली ये परियोजना इस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। परियोजना के पूरा होने के बाद शहरों की सड़कों के ऊपर बिजली की तारों का जो जाल है वो कम होगा और अंडरग्राउंड नेटवर्क के जरिए बिजली की जो आपूर्ति है वो भी की जाएगी। तो ये एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया जा रहा है। और हम हमेशा कहते हैं कि हमारे आसपास के जो गंदगी है, जो जंजाल है, फिर वो चाहे तार हो, चाहे वो और भी कूड़ा कचड़ा हो, उसकी सफाई की जिम्मेदारी भी हमें खुद लेनी चाहिए। अपने घर से इस जिम्मेदारी की शुरुआत करें और अपने बच्चों को, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को ये सिखाइए, सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, इसमें फ़र्क क्या है, दोनों को अलग रखें। ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो हमें खुद करना पड़ेगा और इसके लिए हम किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। चलिए, बहुत सी बातें और भी मुझे बतानी है, तो सुनते रहिए, साथ रहिए। वैसे अगला गीत हम आपको सुनाएंगे के और शिल्पा राव की आवाज़ में, फिल्म का नाम बचना ए हसीनो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गपशप पॉपी के साथ, 11 बजे तक है, ओनली ऑन 107 FM रेनबो पर।

वैसे एक खास खबर और भी आपको देना चाहूंगी, और वो ये है कि जो लोग घूमना पसंद करते हैं, सैर सपाटे में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, भ्रमण प्रिय होते हैं, टूर ट्रैवल करना पसंद करते हैं, उनके लिए एक खास खबर मैं आपको देना चाहती हूँ। जी हाँ, बंगाल सरकार बाबूघाट से मायापुर के बीच हाइब्रिड इलेक्ट्रिक फेरी सेवा शुरू करने की तैयारी में है। जी हाँ, इस जलमार्ग के जरिए पर्यटक यानी कि टूरिस्ट गंगा के रास्ते सफर करते हुए नदी के दोनों किनारों पर स्थित प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। इस परियोजना को अगले 15 महीनों के भीतर चालू कर दिया जाएगा और कभी बंगाल में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए जलमार्ग प्रमुख साधन हुआ करता था। हालांकि रेल नेटवर्क के डेवलपमेंट के साथ साथ धीरे धीरे ये जो तरीका है, ये जो परिवहन का जो महत्व कम होता गया, और अब सरकार इसी पुराने जलमार्ग को पर्यटन के नए माध्यम से एक विकास के दिशा की ओर कदम बढ़ाना चाह रही है। और आपको साथ बताना चाहेंगे कि इस फेरी सेवा के जरिए बाबूघाट से मायापुर तक की यात्रा के दौरान यात्रियों को गंगा के किनारों पर स्थित कई महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाने का अवसर मिलेगा, यानी कि देखने का अवसर मिलेगा और ये दिखाया जाएगा। इसमें जो साइट्स हैं, जो लोकेशंस हैं रखा गया है, वो है बेलूर मठ, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, खरदा का फेरी घाट, बैरकपुर का अन्नपूर्णा मंदिर, श्रीरामपुर का माहेश, श्यामनगर का मूलाजोर काली मंदिर, नैहाटी की बड़ी माँ, बांसबेड़िया की हंसेश्वरी मंदिर, त्रिवेणी संगम, कालना की 108 शिव मंदिर, नवद्वीप और साथ में मायापुर। जी हाँ,

यात्रा आगे बढ़ते हुए त्रिवेणी, कालना और नवद्वीप पहुंचेगी। कालना के 108 शिव मंदिर और नवद्वीप के चैतन्य परंपरा इस जलमार्ग यात्रा को धार्मिक और सांस्कृतिक नजरों से खास बनाएगी। यात्रा का अंतिम पड़ाव मायापुर होगा, जहां इस्कॉन मंदिर और प्रभुपाद की पुष्प समाधि, योग पीठ और श्री चैतन्य मठ समेत कई प्रमुख स्थान जो है वो दर्शनीय है, वो मुख्य आकर्षण बनेगी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बाबू घाट से मायापुर तक का ये जलमार्ग केवल परिवहन का नया विकल्प नहीं, बल्कि बंगाल के इतिहास, संस्कृति और विरासत को एक ही यात्रा में जोड़ने की एक परियोजना है। बहुत अच्छी परियोजना सामने हमें दिख रही है और मुझे उम्मीद है कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ भाई। एक अच्छा सफ़र, मतलब बाबू घाट से मायापुर तक का सफ़र काफ़ी अच्छा होने को है और हम सब इसका हिस्सा बहुत जल्द बनेंगे, तो मुझे लगा कि इसको आपके साथ शेयर करूं। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि 10:43:13 और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कीकी का एक बहुत खूबसूरत रोमांटिक गीत आप सभी दोस्तों के लिए 107 FM रेनबो पर पॉपी के साथ।

आज के दिन। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है बताने का कि आज का दिन, जी हाँ आज का दिन क्यों खास है। और आज के दिन यानी आज 7 सितंबर है, और आज स्पेशल क्या हुआ था या क्या है उसके बारे में आपको बताएं। तो बताना चाहूँगी कि आज ही के दिन, जी हाँ दोस्तों आज ही के दिन मुंबई में 1906 में पहला भारतीय बैंक की स्थापना हुई थी। वहीं आज ही के दिन सन 1931 में लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ था। आज ही के दिन साल 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की लैंडिंग का प्रयास किया गया था, और इस रात पूरा देश जाग रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, आज ही के दिन जो प्रसिद्ध लोग जन्म लिए थे उनमें से एक है उमाजी नायक। जी हाँ, सन 1791 में उनका जन्म हुआ था, वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। साथ ही दक्षिण भारत के सुपरस्टार, मलयालम सुपरस्टार ममूती का आज के दिन सन 1951 में जन्म हुआ था, तो आज वो अपना बर्थडे केक काटेंगे। और सिर्फ इतना नहीं, साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि आज अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस भी मनाया जा रहा है। आपको बताना है हमें कि आतंकवाद, साइबर अपराध, संगठित अपराध और मानव तस्करी जैसी सीमा पार के गंभीर अपराधों से निपटने के लिए वैश्विक स्तर पर पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग को मजबूत करना होता है आज के दिन। और ये दिन दुनिया भर की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस समुदाय के योगदान को सम्मान देता है। तो ये थी खासियत आज के दिन की। और आपको साथ में बताना है, जी हाँ अभी भी कुछ और बताना है, वो क्या है वो बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना है, घुंघरू के साथ।

चुटकी नुस्खे। जी हाँ दोस्तों, नुस्खे की जब बात होती है तो मुझे एक खास बात आपको बताना, वो है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गैजेट जो हमारे हाथों में रहता है, जिसके बिना जिंदगी बिल्कुल बिल्कुल अधूरी से लगती है, उसको बचाना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं मोबाइल्स की बात कर रही हूँ। और मोबाइल की लाइफ आप कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए ध्यान में रखिए कि 0% तक खत्म होने मत दीजिए, और वहीं 100% तक हमेशा चार्ज पर मत रखिए। 20% से 80-85% के बीच इसका बैटरी सेविंग पावर रखना जरूरी होता है। रात भर चार्ज पे लगा के सोना बंद करें, और सिर्फ इतना ही नहीं, ओरिजिनल चार्जर या अच्छी क्वालिटी का चार्जर ही आप यूज करें अपने मोबाइल के रखरखाव के लिए। साथ ही मोबाइल को धूप में, बाइक के डिक्की में या गेम खेलते समय चार्ज पे मत रखिए। गर्मी बैटरी और प्रोसेसर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और कुछ बताना चाहूंगी कि अच्छा बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास लगाने से गिरने पर भी मोबाइल बच जाता है,

और एक बार डिस्प्ले टूटा तो समझ लीजिए लाइफ जो है मोबाइल की आधी हो जाएगी और साथ में आपकी भी। तो उसका आप ज़रूर ध्यान रखें। फ़ोन का 10-15% स्टोरेज हमेशा खाली रखें, फ़ोन स्लो इसी वजह से हो भी जाता है। और जो ऐप्स वीडियोस फोटोज़ काम में नहीं आते हैं उन्हें आप हमेशा डिलीट करते जाएं। साथ ही आपको बताएंगे कि ऐप्स का ध्यान रखें, प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी आप ऐप इंस्टॉल मत करें। फालतू के क्लीनर बैटरी सेवर ऐप्स फ़ोन को और भी ख़राब कर देते हैं और हर 2-3 हफ्ते में एक बार फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर कर लें। ये हम छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, लेकिन नहीं, रीस्टार्ट करने से सिस्टम अपडेट अगर आप करते हैं रीस्टार्ट करते हैं तो बैटरी की लाइफ अच्छी रहती है, मोबाइल की ज़िंदगी में और भी सुधार आता है। अब बात करें सॉफ्टवेयर अपडेट की, तो सिस्टम अपडेट अगर आता है आपके पास, नोटिफिकेशंस आता है, तो उसे ज़रूर जल्द से जल्द करें ताकि सिक्योरिटी और परफॉर्मेंस दोनों बनी रहे, बेहतर रहे। आजकल कुछ मोबाइल्स में ऐसे फीचर्स आ गए हैं जिससे पानी में गिरने से या पानी में बरसात में भीगने से फ़ोन ख़राब नहीं होता है, लेकिन फिर भी कितना भी वाटर रेजिस्टेंट बोला जाए, जानबूझकर पानी में उसे मत ले जाएं। चार्जिंग पोर्ट में धूल अगर घुस जाती है तो उसे पिन से बिल्कुल साफ़ ना करें, वो आल पिन या छोटे छोटे पिन उससे बिल्कुल भी साफ़ ना करें। फूंक मार के सॉफ्ट ब्रश मिलते हैं, छोटे छोटे ब्रशेज मिलते हैं, उन ब्रश से साफ करें। और आपको बताएं कि अगर आप ये रूटीन फॉलो करेंगे तो आपका जो मोबाइल है उसकी उम्र लंबी होगी, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे हम सेहतमंद रहते हैं तो हमारी उम्र लंबी रहती है। आपका फ़ोन भी सेहतमंद रहा तो उसकी उम्र भी लंबी रहेगी। और इस छोटे से पैगाम के साथ, नुस्खे के साथ आपसे इजाज़त लेंगे, फिर मुलाकात होगी आपके साथ 11:10 पर, लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। लेकिन यहाँ नहीं, हम मिलेंगे FM गोल्ड पर। तब तक के लिए नमस्कार।

0: Strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए तीन श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: 107 FM रेनबो शाद सुरे शारदे शाद सुरे शारदे
3: कालो जोई बांग्ला गानेर धारा छुए जाक मन सुनछेन গানদরিয়া 107 FM রেইনবোতে। গানদরিয়া গানদরিয়া ছুঁয়ে যাক মন ছুঁয়ে যাক মন।
4: রয়েছি আমরা, মানে ফিরে এলাম, 12:04 হয়ে 34 সেকেন্ড হয়ে গেছে। অম্বালিকা নীলাঞ্জনা ফিরে এসেছে গানদরিয়া নিয়ে। 107 FM রেইনবোতে রয়েছেন আপনি।

0: नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम और सस्त्रीकाल। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 107 FM रेनबो पर, ठीक 3:05 पर लेकर चाय 3 का तड़का।
1: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM रेनबो पर 3 का तड़का। 3 का तड़का, 3 का तड़का, 107 FM रेनबो पर।
0: जी हाँ, 3 का तड़का, जहाँ बातें होती हैं लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज़ की और साथ ही साथ ढेर सारे खूबसूरत गाने, तड़कते भड़कते लेटेस्ट गाने सुनते हैं हम। तो फिलहाल देना करते हुए चलिए इस गाने से शुरुआत करते हैं हमारे प्रोग्राम की।

तो इस जबरदस्त गाने के साथ ही चलिए बॉलीवुड की सबसे पहली ताजी तरारी करारी खबर की ओर चलते हैं सीधे। दोस्तों रिसेंटली रिलीज हुई है मिर्जापुर। जी हाँ, पंकज त्रिपाठी और अली फजल स्टारर मिर्जापुर द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का बिजनेस भी किया है। फिल्म सिनेमाघरों में आते ही सोशल मीडिया पर भी छा गई है, लोग कितनी तारीफ करते नहीं थक रहे। कालीन भैया और गुड्डू पंडित बड़े पर्दे पर पसंद किए जा रहे हैं। भाई यही वजह है कि फिल्म ने भी अब ओपनिंग वीकेंड में भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की और 7 फिल्मों के रिकॉर्ड्स को भी ध्वस्त कर दिया है। मिर्जापुर मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 25.75 करोड़ की कमाई के साथ खाता खोला था। वहीं फिल्म ने एडवांस बुकिंग में 10 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर लिया था। फिल्म के दूसरे दिन की कमाई में बम्पर उछाल दर्ज की गई थी, जिसके बाद इसने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। अब तीसरे दिन रविवार का भी इसे फायदा मिला है। फिल्म ने दूसरे दिन यानी शनिवार को 32 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि फिल्म ने तीसरे दिन 10:30 बजे तक 36 करोड़ की कमाई भी की। इसके बाद फिल्म की इंडिया नेट कलेक्शन 93.75 करोड़ तक पहुंच गया है। फिलहाल आगे कैसा होने वाला है, आगे का जो वीक है वो कैसा रहने वाला है मिर्जापुर द मूवी के लिए, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। और हम क्या करेंगे, हम सुन लेंगे अगला गाना, क्योंकि जो मोहित चौहान का गाना भी हमारे इंतजार कर रहा है। फिल्म कमीनी से सुन लेते हैं हमारा अगला गीत।

तबू और जयदीप अहलावत भी इम्पोर्टेंट रोल्स में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रेलर लगभग 2 मिनट 52 सेकंड का होगा और इसके लॉन्च को लेकर मेकर्स ने खास प्रमोशनल प्लान्स भी बनाए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दृश्यम फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी की वजह से फैंस ऑलरेडी ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि विजय सलगांवकर इस बार अपने परिवार को किस तरह से प्रोटेक्ट करता है। फिल्म 2 अक्टूबर 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। अब सबकी नजरें 9 सितंबर पर है जब फाइनली ऑडियंस को फिल्म की स्टोरी की पहली प्रॉपर ग्लिम्स मिलने वाली है। तो अगर आप दृश्यम फ्रेंचाइज के फैन हैं, ट्रेलर के लिए रेडी रहिए क्योंकि विजय सलगांवकर एक बार फिर बड़े पर्दे पर अपनी प्लानिंग के साथ आने वाले हैं। फिलहाल के लिए चलिए सुनते हैं अगला गाना जो कि है फिल्म राजा नटवरलाल से रिजीत सिंह के आवाज में। उसके बाद सीधे चलेंगे परियोजना प्रस्तुति की ओर।

0: हो गए हैं आपके सामने लेकर परियोजना प्रस्तुति कांच का नया अंक। कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, लेकिन बीमारी कभी बताकर नहीं आती और अस्पताल का बिल भी अक्सर बिना बताए बड़ा हो जाता है। ऐसे समय में अगर परिवार के पास स्वास्थ्य सुरक्षा का सहारा हो तो मुश्किल काफी कम हो जाती है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार ने 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJ की शुरुआत की। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है और सबसे खास बात, ये कवर परिवार के सदस्यों के लिए है, यानी कि एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कई प्रकार के सेकेंडरी और टर्शियरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट्स के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा मिल सकती है, यानी इलाज के समय जेब से बड़ी रकम देने की चिंता को कम करने में योजना मदद करती है। इसमें अस्पताल में भर्ती होने से पहले और डिस्चार्ज के बाद की कुछ निर्धारित मेडिकल एक्सपेंसेस भी कवर के दायरे में आती है। अब एक जरूरी बात, ये योजना सभी लोगों के लिए स्वतः उपलब्ध नहीं है। पात्रता सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर होती है, इसलिए सिर्फ ये सुनकर कि योजना में 5 लाख रुपए का कवर है, ये मान लेना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति के लिए ये पात्र है। अगर आप और आपके परिवार के किसी सदस्य को लगता है कि आप पात्र हो सकते हैं तो आधिकारिक आयुष्मान भारत पोर्टल या नजदीकी संबंधित केंद्र पर अपनी एलिजिबिलिटी स्टेटस जरूर जांचें, क्योंकि स्वास्थ्य के मामले में एक बात हमेशा याद रखिए, इलाज से पहले जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और सरकारी योजनाएं की सही जानकारी अपने परिवार और आसपास के लोगों तक भी पहुंचाइए। तो ये थी आज की परियोजना प्रस्तुति।
1: 107 FM रेनबो प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
2: गाने जो लगाए एंटरटेनमेंट का तड़का, आप सुन रहे हैं टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर टीम का तड़का 107 FM रेनबो पर।
0: दोस्तों, तीन का तड़का में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परियोजना प्रस्तुति के बाद। चलिए सुन लेते हैं अगला गीत जो है कॉकटेल 2 से।

0: 107 FM Rainbow Presents परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति।
1: नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो की घड़ी में 3:20 होने जा रहा है और हम प्रस्तुत हो

दोस्तों, अक्षय कुमार और सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म हैवान को लेकर आज एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है प्रियदर्शन, जो बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी फिल्म के

ये काफी पॉपुलर रहे, लेकिन हैवान के साथ प्रियदर्शन एक सीरियस थ्रिलर स्पेस में वापस आ रहे हैं। डायरेक्टर ने खुद फिल्म को अपने करियर के एक नए चैप्टर की शुरुआत बताई है। फिल्म में अक्षय कुमार एक रूथलेस एंटेगोनिस्ट के रोल में नजर आएंगे, जबकि सैफ अली खान एक ब्लाइंड मार्शल आर्टिस्ट का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन ने फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी और भी बढ़ा दी है, क्योंकि ऑडियंस अक्षय और सैफ को एक डिफरेंट सेटअप में बहुत जल्द देखने वाले हैं। फिल्म से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग अपडेट है कि श्रिया पिंगलावकर का ग्लैमरस डांस नंबर मैं तो नहीं हैवान नाम के इस सॉन्ग में श्रिया पहली बार एक फुल स्केल बॉलीवुड डांस परफॉर्मेंस करती नजर आएंगी। यानी फिल्म में थ्रिलर एक्शन के साथ एंटरटेनमेंट का भी प्रॉपर डोज देखने को मिल सकता है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रियदर्शन का ये सीरियस थ्रिलर ऑडियंस को कितना इम्प्रेस कर सकता है। फिलहाल के लिए तीन का तड़का में जो ये चटपटी बॉलीवुड खबरों का जो सिलसिला है अभी फिलहाल यहीं पे हम उसको अंत करते हैं, क्योंकि अब 3:30 बजे समय हो जाएगा एनसीईआरटी का स्पेशल प्रोग्राम उमंग सुनने का। फिलहाल जाते जाते मैं आप लोगों के लिए छोड़े जा रही हूँ हैप्पी एंडिंग से रेखा भारद्वाज, शिखर सरैया और प्रिया एंड्रयूज के पास भी ये बहुत ही प्यारा सा गाना, और मिलते हैं वापस ठीक 5:15 पर FM गोल पर लेकर चायन क्लासिक्स, और साथ ही साथ उसके बाद FM रेनबो पर वापसी होगी ठीक 7 बजे लेकर सुरों की महफिल। तो इंतजार कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। ये है यही 107 FM रेनबो है। ये मैं भाभिया फिलहाल लेती हूँ आप सभी से विदा।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले सुनते हैं सुविचार। सफलता की राह में मुश्किलें तो आएंगी, पर जो इंसान हिम्मत नहीं हारता वही एक दिन अपनी मेहनत से परिस्थितियां बदल देता है। श्रोताओं, इसे हमें भेजा था सुंदरनगर हिसार हरियाणा से मोनिका खरलवा, पंकज, शिवम, नैन्सी, सुरेश खरलवा जी ने। आप सभी को उमंग कार्यक्रम की ओर से धन्यवाद। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, देश हमारा, शान हमारी, तिरंगा है हमारी पहचान। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू ने। उन्होंने लिखा है, नमस्कार, जब भी अगस्त का महीना आता है हमारा मन आजाद हिंदुस्तान के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले अनेकानेक स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में अनायासी नतमस्तक हो जाने को लालायित हो जाता है। आपने 10 अगस्त से 14 अगस्त वाले सप्ताह में सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल सरीखे महान स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन वृत्तांत उमंग कार्यक्रम में शामिल करके मन को उत्साहित और जोश से भर दिया। समयानुकूल कार्यक्रम पेश करना उमंग की पुरानी परंपरा है, हम इसके कायल हैं। आपकी पूरी टीम को धन्यवाद और आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार संदेश भेजने के लिए। अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया, करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए लिखा है, अजीत जी और विमलेश जी नमस्कार, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो आइए जानते हैं। हमारा पहला प्रश्न था, सम्राट अशोक किस वंश के सम्राट थे? इसका उत्तर है साथियों, सम्राट अशोक मौर्य वंश के सम्राट थे। हमारा अगला प्रश्न था, शहीद बालक बाजी राउत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। शहीद बालक बाजी राउत का जन्म 5 अक्टूबर 1926 को ओडिशा राज्य के ढेंकानाल जिले के नीलकंठपुर गांव में हुआ था। फिर हमने आपसे पूछा था कि जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें क्या संदेश मिलता है। इसका उत्तर आप सबने अलग अलग ढंग से दिया था, लेकिन मूल उत्तर है, जापान में पुरानी मशीनों को रिटायर करने की इस सामाजिक परंपरा से हमें संदेश मिलता है कि हमें अपनी उपयोग की हुई पुरानी वस्तुओं के प्रति भी सम्मान और धन्यवाद का भाव रखना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न था, जापान के क्यू शिराता की रेलवे स्टेशन को कब बंद कर दिया, जहां से काना हराडा नाम की स्कूली बच्ची ट्रेन लेती थी? इसका उत्तर है साथियों, जापान की स्कूली छात्रा काना हराडा रोज क्यू शिराता के स्टेशन से स्कूल जाने के लिए ट्रेन लेती थी। ये स्टेशन मार्च सन 1918 को तब बंद कर दिया गया जब उस बालिका के स्कूल का अध्ययन पूरा हो गया। और हमारा अंतिम प्रश्न था, सेब की खेती करने वाले श्री सत्यानंद स्टोक्स किस देश के, किस राज्य के निवासी थे? सत्यानंद स्टोक्स संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया शहर के निवासी थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, और प्रस्तुत है उमंग प्रसारण का मासिक संस्करण श्रोता संवाद।
0: नमस्कार श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के विशेष संस्करण श्रोता संवाद में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र अजीत। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रति माह

0: हम आपके लिए लेकर आते हैं श्रोता संवाद, जिसमें हम करते हैं चर्चा शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। हमें पता है कि आपकी उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा। तो चलिए अब आपकी उत्सुकता शांत कर देते हैं। हमारी आज की चर्चा का विषय होगा शिक्षा में जेंडर समावेशन। तो श्रोताओं, इस क्रम में आज हमारे साथ विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर श्वेता तंवर। तो आपके बारे बता दूं कि आप NCERT के जेंडर अध्ययन विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो सबसे पहले करते हैं चर्चा की शुरुआत इस प्रश्न के साथ कि जेंडर समावेशन से आपका क्या अर्थ है। दूसरे शब्दों में पूछूंगा, जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका तात्पर्य क्या होता है?
1: जी, इससे पहले कि हम जेंडर का अर्थ समझें, हमें लिंग और जेंडर के बीच का मूलभूत अंतर को समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो जाता है। जहां लिंग जैविक विभिन्नताओं से संबंधित है, वहीं जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। जेंडर जैसे कि पुरुषत्व एवं स्त्रीत्व से जुड़ी विशेषताएं और व्यवहारों को संदर्भित करता है। जैसे किसी विशेष समाज में लड़कों, लड़कियों, पुरुषों और महिलाओं के दृष्टिकोण, भूमिकाओं, उत्तरदायित्वों तथा व्यवहार को आकार देता है। जब हम जेंडर शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि समाज में सभी जो लिंग हैं, जैसे कि स्त्री, पुरुष या फिर और भी जेंडर आइडेंटिटीज हैं,
0: बालक बालिका हो सकते हैं।
1: हाँ, बिल्कुल। और उसके अलावा हमारे ट्रांसजेंडर्स भी हैं। अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वो ट्रांसजेंडर्स को भी इंक्लूड करती है।
0: तो आज का जो हमारा विषय था वो था जेंडर समावेशन, वो भी शिक्षा में। इसकी व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगी?
1: जी, पहले तो हम बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की।
0: जी।
1: और उसके बाद फिर हम आएंगे शिक्षा के क्षेत्र में। तो जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर समावेशन का अर्थ है जितने भी हमारे समाज में स्त्री, पुरुष या फिर अलग तरह की जेंडर आइडेंटिटीज हैं, जैसे कि ट्रांसजेंडर, उन सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए तथा सम्मान मिलना चाहिए।
0: जी।
1: और उनको जितने भी हमारे क्षेत्र हैं, उन सभी में उनका पार्टिसिपेशन हर तरह से बराबर हो,
0: यानी उनकी भागीदारी या उनकी प्रतिभागिता बनी रहे।
1: हाँ।
0: आप ये कहना चाहते
1: जी,
0: हैं? जी। तो आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये होने जा रहा है और मुझे आशा है कि हमारे श्रोता भी इस प्रश्न के उत्तर के द्वारा बहुत संतुष्ट होंगे। तो मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में जेंडर समानता को बढ़ावा देने के लिए NCERT की क्या भूमिका है?
1: जी अजीत जी, ये प्रश्न अपने आप में ही बहुत महत्व रखता है आज के स्थिति में। अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो कि 6 साल पहले आई थी, आज अपना 6ठा वर्ष पूरा कर चुकी है।
0: जी।
1: और इसी के चलते NCERT भी इसके सालगिरह को मना रहा है।
0: जी।
1: जैसा कि हम देख सकते हैं, और जेंडर इक्वालिटी और समावेशन के जो शिक्षा के मूल आधार हैं, उनको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के स्तंभों में रखा गया है।
0: जी।
1: ताकि हर वर्ग के छात्रों को समान अवसर मिल सके। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है, वो स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी हमारे जो बालिकाएं हैं, ट्रांसजेंडर समुदाय के जो लोग हैं, उन सब में बिना भेदभाव के सुरक्षित तरीके से तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है उसको सुनिश्चित किया जा सके।
0: तो डॉक्टर श्वेता, हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, इसके विषय में कुछ और आप कहना चाहेंगी? यानी मेरा कहना है कि क्या इस पर कुछ और विस्तार आप देना चाहेंगी?
1: जी अजीत जी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जेंडर इक्वालिटी की बात करती है, बट उससे पहले जरूरी ये है कि जेंडर इक्वालिटी की बात करने की जरूरत क्यों पड़ी।
0: जी।
1: तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी ये जो नीति है 2020 में आई, इन्होंने एक टर्म दिया सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, जिसको भी हम ये भी कह सकते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग,
0: या तो वंचित वर्ग भी कह सकते हैं,
1: वंचित लोग जो हैं।
0: जी।
1: तो इसमें उन्होंने जेंडर आइडेंटिटीज को रखा, जैसे कि महिलाएं और ट्रांसजेंडर। दूसरा उन्होंने रखा सोशियो कल्चरल आइडेंटिटीज, जो कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिसमें कि SC ST OBC और हमारे माइनॉरिटीज भी आते हैं। इसके अलावा दिव्यांगजन भी हो सकते हैं, कुछ जो हमारे वर्ग ऐसे भी हैं जो भारत के दूर दराज इलाकों से आते हैं, तो उन तक भी संसाधनों की हमेशा जो है पहुंच नहीं हो सकी है पूरी तरह से। तो जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उन सभी को इंक्लूड करती है अपने उसमें,
0: उन सबको शामिल करती
1: है।
0: जी।
1: तो इसमें कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो जितनी भी हमारी बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं या फिर ट्रांसजेंडर हैं, उन सभी को इन वर्गों में देखा जा सकता है।

0: लगता है। हमारी जो लड़कियां हैं वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के सेक्शन से भी आती हैं, कहीं ना कहीं वो जो ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं उनमें भी दूर से आती हैं, या दिव्यांग जनों में भी हमारी बहुत सारी लड़कियां होती हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसी डीजीज की बात जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी या कंसर्न्स क्या थे, वो ये कि इन सभी के जो स्कूल छोड़ने की दर है हमारी जो लड़कियां हैं, ड्रॉप आउट रेट जिसको हम बोलते हैं, तो उनमें बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई।
1: लड़कों की संख्या में या लड़कियों की?
0: लड़कों के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो लड़कियों के जो ड्रॉप आउट रेट्स में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है
1: जी।
0: उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उन कारणों पर चर्चा की गई है, उनको इसमें शामिल किया गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, और किस तरह से इन कंसर्न्स को, इन गैप्स को हम भर सके, इन पर काम कर सके, उसके बारे में कुछ प्रावधान और रणनीतियां दी गई हैं।
1: तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की, अब हम ये जानना चाहेंगे विशेष करके श्रोताओं की ओर से मेरा प्रश्न ये होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसके लिए प्रावधान क्या क्या है।
0: जी, सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रावधान जो है वो है सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट, जिसे कि हम ये कह सकते हैं
1: सुरक्षित
0: बुनियादी जो ढांचा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
1: जी,
0: वो सबको मिले।
1: तो आपने बात की फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की यानी बुनियादी ढांचे की, तो बुनियादी ढांचे से क्या तात्पर्य है आपका?
0: जी, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे स्कूल परिसर या फिर कॉलेजों के परिसर में कई बार क्या होता है, महिलाओं के लिए अलग से शौचालय नहीं होते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से उनका जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ पाया गया है,
1: महिलाओं का या बच्चियों का भी कह सकते हैं,
0: बच्चियों का
1: जी,
0: लड़कियों का
1: हाँ।
0: और इसके अलावा अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं सुरक्षित छात्रावास, हॉस्टल फैसिलिटीज जिसको हम देखते हैं, कई बार ऐसी लड़कियां जो सामाजिक रूप से वंचित वर्गों से आती हैं
1: जी,
0: उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो अपने घर के आसपास इसको पढ़ें या फिर अपने घर में या स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में जा सके,
1: आवास की सुविधाएं नहीं होती,
0: आवास की सुविधाएं जो है वो नहीं होती है। तो इसी तरह से जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन्होंने छात्रावास की फैसिलिटीज को अवेलेबल कराया है,
1: यानी उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि ये बच्चे जब पढ़ने आए तो उनके लिए आवासीय सुविधाएं भी उपलब्ध
0: हो,
1: आप ये कहना चाहती हैं?
0: जी। तो छात्रावास के अलावा अगर हम देखें तो स्वच्छता की सुविधाएं, जैसे कि बेसिक हाइजीन और सैनिटेशन की हम बात करते हैं, एक साफ सुथरा माहौल की हम बात करते हैं, तो उसका निर्माण सुनिश्चित किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत। एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम ये भी उठाया जा रहा है कि जैसे कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, जिसको हम KGBVs भी कहते हैं, तो उसमें उन लड़कियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने में सहायता दी जाती है जो कि सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, ताकि वो 12वीं तक अपनी शिक्षा को पूरा कर सके और उनको वो सारी सुविधाएं मिल सके। और नीति में ये भी कहा गया है कि जितने भी हमारे KGBVs हैं उनको पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा
1: जी।
0: और इसी के साथ साथ कुछ ऐसी छात्रवृत्तियां भी हैं जिसमें स्कॉलरशिप हो गई, सो दैट हर लड़की को, हर ट्रांसजेंडर जो हमारा बच्चा है, विद्यार्थी है, उसको समान रूप से शिक्षा दी जाए। छात्रवृत्ति के साथ साथ मुफ्त साइकिल, स्कूटी या फिर वित्तीय प्रोत्साहन भी देने का प्रावधान है
1: जी।
0: और इसके साथ साथ एक बहुत ही जरूरी चीज है जो कि भेदभाव रहित पाठ्यक्रम, ये एक ऐसी बातें जो है इसमें की गई है कि पाठ्य पुस्तक या फिर शिक्षा पद्धति उसमें सभी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और बायस को हटाना चाहिए। तो जो नीति है वो पाठ्य पुस्तक और शिक्षा पद्धतियों में भेदभाव रहित पाठ्यक्रम की बात करती है।
1: डॉक्टर श्वेता, हमने पाठ्यक्रम की बात तो सुनी, भेदभाव रहित पाठ्यक्रम ये क्या होता है, इसके बारे हम जरूर जानना चाहेंगे।
0: जी, ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही गहराई वाला प्रश्न है, क्योंकि देखा जाए तो पाठ्यक्रम हम सभी ने सुना है
1: जी,
0: लेकिन आज के जो हमारी स्थिति है हम बात करते हैं जेंडर इक्वालिटी की, जेंडर समानता की
1: जी।
0: और खाली जेंडर समानता ही नहीं, हम बात करते हैं सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आने वाले सभी उन लोगों की, जैसे कि हमारे ट्राइबल, जैसे कि हमारे SC/ST
1: आदिवासी लोग, जनजातीय लोग
0: है ना, तो इन सभी का जो है समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, हमारी टेक्स्ट बुक में इनके जीवन को शामिल किया जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको दर्शाया जा सके।
1: तो जो मुझे समझ में आया वो कुछ ऐसा आया कि जेंडर इक्वेलिटी या जेंडर इश्यूज की जब हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ स्त्री और पुरुष या बच्चे और बच्चियां नहीं होता है
0: जी,
1: इसका शायद ये है।
0: नहीं, मैं इसमें आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जेंडर का असली मतलब क्या है, जो हम ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं. कहीं ना कहीं हमारे समाज में आपने देखा होगा हम स्त्री की बात करते हैं, पुरुष की बात करते हैं. बट अभी ये एक पहला कदम जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने लिया है वो ये है कि उन्होंने इस जेंडर आइडेंटिटी के कैटेगरी में ट्रांसजेंडर्स को भी रखा है.
1: जी.
0: स्त्री और पुरुष ट्रांसजेंडर्स भी उनके साथ साथ समाज का हिस्सा बन सके.
1: जी.
0: जिस तरह से पहले हमारे पाठ्यक्रम में या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में स्त्री का काम अलग होता था, पुरुषों का काम अलग होता था, और किताबों में या पाठ्यक्रम में उनको उसी तरह से दर्शाया जाता था, तो इस बार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उन स्टीरियोटाइप्स को, उन बायसेस को तोड़ने की कोशिश करती है.
1: हाँ, कुछ उदाहरण जैसे कि समाज में मिलते हैं कि जैसे अगर लड़का है तो क्योंकि वो शारीरिक श्रम अधिक कर रहा है तो ये माना जाता था कि लड़की का काम है नहीं ज्यादा, तो उसको आहार की जो सुविधा है ज्यादा मिले, इसको कम मिले, इस तरह की बातें होती थी पहले.
0: तो एक स्कूली जो उदाहरण है वो मैं आपको देना चाहूंगी. आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो लड़कियां हैं उनको रंगोली बनाने के लिए बहुत बार प्रोत्साहित किया जाता है या फिर वो उसी में भागीदारी उनकी होती है.
1: जी.
0: लेकिन लड़कों की भागीदारी देखी जाए तो कोई भी भारी सामान या भारी वस्तु उठानी होती है.
1: हाँ.
0: तो ज्यादातर जो शिक्षक होते हैं वो लड़कों को ही उस चीज में बुलाते हैं.
1: जी.
0: तो कहीं ना कहीं ये जितने भी हमारे स्टीरियोटाइप्स हैं, ये तो सिर्फ एक उदाहरण जो मैंने आपको दिया है, बट इसके अलावा बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर आपको लड़कों और लड़कियों में एक भेदभाव नजर आता है. तो कहीं ना कहीं शिक्षा नीति जो है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अपने पाठ्यक्रम के द्वारा, अपनी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा इन स्टीरियोटाइप्स को हटाकर समानता की भावना को विकसित करने की दिशा देती है.
1: ये आपने बड़ी उपयोगी बात बताई और इसके द्वारा मुझे लगता है हमारे श्रोता भी बहुत लाभान्वित होंगे.
0: जी.
1: तो अब आते हैं एनसीईआरटी पर. हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे कि एनसीईआरटी के जेंडर विभाग का, जिस विभाग से आप हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और ये विद्यालयी शिक्षा को और अधिक समावेशी बनाने में किस प्रकार से योगदान दे रहा है आपका विभाग?
0: जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज, जेंडर अध्ययन विभाग जो है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका जो नाम था वो था विमेन स्टडीज, डिपार्टमेंट ऑफ विमेन स्टडीज.
1: जी.
0: बट क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट के बाद इसका नाम जो है डिपार्टमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज रखा गया.
1: जी.
0: इसके पीछे ये कारण रहा कि विमेन स्टडीज जो है उनको हम खाली विमेन तक सीमित ना रखें.
1: जी.
0: जो जेंडर का अर्थ था
1: बिल्कुल.
0: वो सिर्फ विमेन तक सीमित रहता था, महिलाओं तक सीमित था. लेकिन उसके बाद इसमें हम ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ लड़कियों को हमें आगे बढ़ाना,
1: जबकि जेंडर से अर्थ आपका दोनों का होता
0: है. जेंडर से अर्थ, बिल्कुल सही कहा आपने. जेंडर से अर्थ हमारा सभी, जो हमारी लड़कियां हैं, जो हमारे लड़के हैं और हमारे ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को समान रूप से आगे बढ़ाना.
1: जी.
0: किसी के साथ भी भेदभाव ना हो और सभी को समानता से आगे बढ़ाया जा सके. तो इसके लिए हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग है वो स्कूली शिक्षा में जेंडर इक्वालिटी, जेंडर समानता और संवेदनशीलता लाने के लिए एक समर्पित विभाग है. और पहले इसे, जैसे मैंने आपको बताया था, एक महिला अध्ययन विभाग कहा जाता था, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत इसके दायरे को और बढ़ाया गया है. इसमें बालिकाओं के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों और जितने भी हमारे जो सामाजिक व आर्थिक रूप से कमजोर समूह हैं, उनको भी शामिल किया गया है.
1: तो इसमें आप लोग क्या क्या करते हैं, आप लोगों की गतिविधियां क्या हैं?
0: जी, सबसे पहला हमारा है कि हम नीतिगत क्रियान्वयन की हम बात करते हैं, कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और उसके तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसमें कि दो हमारे फ्रेमवर्क्स हैं, पहला है फाउंडेशनल स्टेज के लिए और दूसरा है स्कूल एजुकेशन के लिए. तो इसको हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है उसमें जेंडर समानता की जो लक्ष्य है उनको जमीनी स्तर पर लागू करना.
1: जी.
0: ये सबसे पहला हमारा जो मुख्य भूमिका है वो ये है. दूसरा है जितनी भी रूढ़िवादिता है उनका हम जो है उन्मूलन कर सके.
1: रूढ़िवादिता जैसे कुछ उदाहरण आप देना चाहेंगे?
0: जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी, हमारे समाज में बहुत सारे इस तरह के जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों को अलग तरह से देखते हैं. महिलाओं का रोल अलग दिखाते हैं और पुरुषों का रोल अलग दिखाते हैं.
1: जी.
0: तो उसी तरह की जो रूढ़िवादिताएं हैं उनको स्कूली शिक्षा के माहौल में, पाठ्यक्रम में तथा जो शिक्षण पद्धति है उनमें इन तरह की जो भेदभाव है उसको पूरी तरह से समाप्त करना.
1: जी.
0: उसके अलावा जो हमारा जो विभाग है वो ये भी काम करता है कि जो समाज के सबसे पिछड़े ग्रामीण इलाकों से आने वाले या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की लड़कियां या जो ट्रांसजेंडर बच्चे हैं उनकी शिक्षा के अधिकारों की हम बात करते हैं।
1: तो ये जानकारी आपने बड़े विस्तार से हमें दी, अब हम ये जानना चाहते हैं ये कार्य आप किस प्रकार से करते हैं।
0: जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह के काम करते हैं जिससे कि हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकें। सबसे पहला जो है हमारा पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक, उनका विश्लेषण करते हैं कि किस तरह से जो है सभी नई या पुरानी किताबें, उनकी समीक्षा हम करते हैं ताकि उनमें से किसी भी प्रकार की जेंडर स्टीरियोटाइप्स या जेंडर बायसेस को या फिर भेदभाव को हटाया जा सके और एक सकारात्मक प्रतिनिधित्व को हम उसमें शामिल कर सकें, जैसे कि किताबों के चित्र हो या फिर कहानियां हो जिसमें महिलाएं व ट्रांसजेंडर जो हैं हमारे उनको वैज्ञानिकों के रूप में, नेताओं के रूप में, खिलाड़ियों के रूप में और विभिन्न पेशेवर भूमिकाओं में दिखाना सुनिश्चित हो सके।
1: हाँ, पायलट्स के रूप में इत्यादि,
0: हाँ,
1: जी,
0: है ना? जी
1: जी जी।
0: तो आज हमारे श्रोता भी जानते होंगे इस चीज को, जिस तरह से चंद्रयान में हमारी बहुत सारी जो महिला वैज्ञानिक हैं उन्होंने इस चीज में लीड ली,
1: उनकी प्रतिभागिता बहुत बड़ी रही,
0: बहुत ज्यादा
1: सारे राष्ट्र में इसकी चर्चा है।
0: हाँ, जी। तो उन्होंने इस चीज को आगे बढ़ाया और पूरे राष्ट्र में महिलाओं की एक अलग भूमिका को,
1: एक अलग छवि बनी,
0: अलग छवि जो है उनकी बनी। तो इसी तरह से एक जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की भी हम बात करते हैं, जिसको कि भाषा के रूप में अगर हम शिक्षण सामग्री में जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज की बात करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेयरमैन एक ऐसा शब्द है जहां पर एक ऐसी इमेज बनती है कि एक चेयरमैन एक पुरुष है,
1: ऐसा लगता है कि वो एक पुरुष है,
0: एक पुरुष है, तो उसकी बजाय हम बात कर सकते हैं चेयरपर्सन,
1: चेयरपर्सन
0: विच इज अ न्यूट्रल वर्ड। तो उसके लिए हम इस तरह की और भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनको हम जेंडर न्यूट्रल उसमें देखते हैं।
1: ऐसे और कौन कौन से शब्द हो सकते हैं हम जानना चाहेंगे, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है।
0: जी, बहुत जरूरी है ये देखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिसमैन या पोस्टमैन, ज्यादातर हमने अपनी डेली लाइफ में अपने जो रोज की जिंदगी में इसी तरह के शब्द सुने हैं, तो पुलिसमैन की जगह पुलिस पर्सन हो सकता है, ऐसे ही पोस्टमैन की जगह पोस्ट पर्सन भी हो सकता है
1: बिल्कुल हो सकता है जी।
0: तो अब जैसे कि एक्टर है, एक्टर वर्ड अपने आप में न्यूट्रल वर्ड है,
1: न्यूट्रल वर्ड,
0: बट एक्ट्रेस जो है दैट शोज दैट इट्स अ फीमेल। तो इसी तरह से पुरुषों के लिए एक अलग शब्द भी होता है या फिर महिलाओं के लिए एक अलग शब्द भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसे शब्द हैं जो कि सिर्फ पुरुष को दिखाया जाता है इन शब्दों में।
1: तो अब हम आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न में और आपसे हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर श्वेता की शिक्षकों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए ऐसी कौन सी व्यवहारिक सलाह आप देना चाहते हैं या प्रैक्टिकल एडवाइस आप कौन सी देना चाहते हैं जिससे विद्यालय और घर दोनों स्थानों पर जेंडर संवेदनशील वातावरण बनाया जा सके।
0: जी, ये भी मैं कहना चाहूंगी कि हम सारा जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ एक शिक्षक को ना देते हुए इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो अभिभावक हैं और हमारे छात्र जो है खुद, वो तीनों ही चीजें मिलकर जो है प्रयास करने चाहिए, जिसमें कि हमारे शिक्षक, अभिभावक और छात्र, इसके लिए हमें पुरानी जो रूढ़िवादी सोच है उसको छोड़कर आपसी सम्मान की संस्कृति को सबसे पहले अपनाना होगा। तो उनके लिए कुछ व्यवहारिक और सुझाव जो है वो मैं देना चाहूंगी
1: जी।
0: इसके भीतर सबसे पहले अगर हमने देखा होगा कि हमारी जो क्लासरूम की सेटिंग्स हैं, जो हमारा बैठने का जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है। आज भी जब हम कहीं दूर दराज इलाकों में जाते हैं तो लड़के और लड़कियों को अलग बिठाया जाता है, जबकि

0: आने के लिए या फिर खेल के लिए हम लड़कों को प्रोत्साहन करें
1: और खाना बनाने के लिए
0: लड़कियों को करें या सजावट का काम करने के लिए हम लड़कियों को आगे बढ़वाएं, तो सभी जिम्मेदारियों को बारी बारी से बदला जाए
1: जी।
0: और इसके अलावा जो हमारी जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज है उसको हम बहुत ज्यादा प्रमोट करें
1: जी।
0: और उन सभी को प्रोत्साहित करें कि लड़के या लड़कियों जो है उनको हम एक न्यूट्रल शब्द का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि जेंडर न्यूट्रल भाषा
1: यानी कि जो तटस्थ भाषा है।
0: जी हाँ
1: जी हाँ।
0: तो कहने का मतलब ये है कि ज्यादातर कई बार हमने जो अपने कक्षा में देखा है कुछ शिक्षक ऐसे जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं बच्चों या बच्चे, तो कहीं ना कहीं इस तरह से ये प्रोजेक्ट होता है कि लड़कियों को उस चीज में शामिल नहीं किया गया है। तो इसके बजाय हम कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे कि विद्यार्थी या क्लास या फिर आप सभी लोग, इस तरह के सामूहिक शब्दों का प्रयोग करें, ना कि सिर्फ लड़के या लड़कियां।
1: हाँ, क्योंकि यदि बच्चों कहा जाए तो लगता है कि लड़कों को बोला जा रहा है।
0: जी हाँ, तो इसी तरह से हम विद्यार्थियों कह सकते हैं।
1: हाँ, विद्यार्थियों कह सकते हैं।
0: न्यूट्रल शब्द भी
1: शिक्षार्थियों कह सकते हैं।
0: शिक्षार्थियों भी कह सकते हैं।
1: जी हाँ जी हाँ
0: जी। कई बार क्या होता है, ऐसे अनकॉन्शियस बायस होते हैं जिसको भी अनजाने में हम अपने बिहेवियर में ले आते हैं
1: जी।
0: तो ऐसा करने से हमें बचना चाहिए। जहाँ लड़कियों की तारीफ सिर्फ शांत और साफ सुथरी होने के लिए करी जाती है, वहीं पर लड़कों की तारीफ बहादुर और बुद्धिमान होने के लिए की जाती है
1: जी।
0: तो बुद्धिमता और मेहनत की तारीफ बिना जेंडर देखे की जानी चाहिए
1: जी।
0: और इसी के अलावा सकारात्मक जो भी रोल मॉडल्स हैं हमारे, उनके उदाहरण हमें देने चाहिए, जैसे कि महिला वैज्ञानिक या फिर पुरुष नर्स। कई बार आपने देखा होगा कि नर्स का जो जैसे ही हम सुनते हैं इस प्रोफेशन के बारे में, हाँ, वो जो छवि है उसमें हमें हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं, या एयर होस्टेस की जो छवि है उसमें भी हम सिर्फ महिलाओं को देखते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को हम जो है चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
1: हाँ, एयर होस्ट शब्द बहुत कम सुनाई पड़ता है
0: जी। एयर होस्ट आपको नहीं सुनाई देता। उसके अलावा एक दूसरा शब्द होता है स्टीवर्ड, शायद मुझे नहीं पता कि वो ठीक है,
1: दोनों यूज होते हैं।
0: हाँ, तो हम उसकी जगह एक ऐसे रोल मॉडल्स को सकारात्मक जो उदाहरण दे सकें लड़कियों को, महिलाओं को, उस तरह के उदाहरण को हमें शामिल करना चाहिए, ताकि हमारे सभी बच्चे हर क्षेत्र में अपने उस अस्तित्व को स्वीकार कर सके
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अंतिम प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, वो ये है कि यदि कोई शिक्षक या विद्यालय जेंडर संवेदनशील शिक्षण सामग्री या प्रशिक्षण या मार्गदर्शन आपके विभाग से प्राप्त करना चाहे तो आप उन्हें किस प्रकार से सहायता प्रदान करेंगे?
0: जी, तो एनसीईआरटी के बहुत सारे डिजिटल पोर्टल्स हैं जिसमें कि प्रकाशन और समर्पित विभागों के माध्यम से भी इसे पूरी तरह से मुफ्त व ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि सबसे पहला आपने अगर सुना होगा तो दीक्षा पोर्टल भी है और उसका एक मोबाइल ऐप भी है, वो आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। दूसरा हमारा ई पाठशाला पोर्टल है, उस पर भी जितनी भी हमारी वेबसाइट्स हैं, सभी तरह की जो सामग्री है उसको आप जाकर देख सकते हैं। तीसरा हमारा जो जेंडर अध्ययन विभाग, उसकी वेबसाइट पर भी हर तरह की जो सामग्री है और हर तरह की जो हमारे मॉड्यूल्स हैं उनको आप प्राप्त कर सकते हैं
1: जी।
0: इसके अलावा जो है हमारा एनसीईआरटी का एक पब्लिकेशन डिवीजन जहां पर किताबों की बिक्री भी होती है, तो यहां पर भी आप पोर्टल पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं जो सीधे आपके स्कूल या घर पर डिलीवर हो जाएगी
1: जी।
0: मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी अजीत जी, एक बहुत जरूरी जो कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने लिया वो ये कि लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, इसको प्रदान करने के लिए एक विशेष कोष बनाया गया है जिसको हम जेंडर इंक्लूजन फंड भी बोलते हैं। इस नीति में विशेष रूप से लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को शामिल करने का प्रावधान है।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर श्वेता जी।
0: धन्यवाद अजीत जी।
1: हमें आशा है कि हमारे सभी श्रोताओं को आज की बातचीत से, हमारी चर्चा से सच में बहुत लाभ प्राप्त हुआ होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो श्रोताओं, हमारी आशा है कि आज की बातचीत आपके लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद रही और यदि आपको अच्छी लगी तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख भेजिए। एक बार फिर से आप सबको हमारा नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रोता संवाद। हमें आज के कार्यक्रमों के लिए आपसे प्रतिक्रिया की आशा रहेगी। हमारा टोल फ्री नंबर है 8800-440-5559 और साथ ही साथ हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भी आप हमें संदेश भेज सकते हैं। और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक

0: के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: तो आप सुन रहे थे एनसीईआरटी का विशेष कार्यक्रम उमंग। अब आगे के कार्यक्रमों के लिए इंतजार कीजिए।

0: ये तो चल नहीं रहा है।
1: ये क्या हुआ?
2: What happened?
3: पावर चला गया होगा।
0: अब क्या करेंगे? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ 107 FM रेनबो पर। ठीक 7:04 टाइम हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में, और अभी आप सुनेंगे
1: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
0: और आज है सोमवार का दिन, तो सजेगी सुरों की महफिल।
2: सुरों की महफिल।
0: दोस्तों, आज की महफिल में बात होगी एक ऐसी चीज की जो कभी हमारे रिश्तों का सबसे खूबसूरत जरिया हुआ करता था, चिट्ठी। आज किसी को याद किया, मोबाइल उठाया और संदेश भेज दिया। सामने वाला तुरंत पढ़ भी सकता है और जवाब भी दे सकता है। लेकिन एक समय था जब किसी का हाल जानने के लिए कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। कागज पर लिखे कुछ शब्द, एक लिफाफा, टिकट और फिर डाकिये का इंतजार। चिट्ठी पर बने यादगार फिल्मी प्रसंगों ने इस इंतजार को बहुत खूबसूरती से हमारी यादों में जगह भी दी है। तो आपके लिए चिट्ठी जब लिखा करते थे उस वक्त की कौन सी पुरानी यादें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे, फोन कीजिए, बताइए हमें।

दोस्तों चिट्ठी पर बनी सबसे यादगार कहानियों में से एक फिल्म नाम का प्रसंग चिट्ठी आई है। इसमें पंकज उदास की आवाज और आनंद बख्शी के शब्दों ने घर से दूर रहने वालों की भावनाओं को गहराई से सामने रखा है। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के था। तो फिल्म में ये प्रसंग विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच घर और अपने याद को सामने लाता है। यही वजह है कि ये सिर्फ एक फिल्मी दृश्य नहीं लगा, बहुत से लोगों के लिए ये अपने घर की याद की आवाज बन गई। तो चलिए ये गाना तो हमने सुन लिया, फिलहाल हमारे पहले कॉलर को भी हम ऑनर ले लेते हैं। हेलो,

0: गुड इवनिंग पापिया जी।
1: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम रेनबो पे, छाया लोक पे।
0: शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना अच्छा टॉपिक लाने के लिए।
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी फोन करने के लिए, थैंक यू।
0: सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, एक प्यारा सा दिल जो कभी नफरत नहीं करता, एक प्यारा सा मुस्कान जो कभी ठीक ही नहीं करती, एक ऐसा जो कभी दुख नहीं देता
1: जी,
0: और एक चिट्ठिया का बात कभी खत्म नहीं
1: होता। वाह क्या बात है।
0: देखिए चिट्ठी जो होता है हमारे पार्ट ऑफ लाइफ मेरे हिसाब से, इससे हमारे छुआ होता है, हमारे दिल का छुआ होता है, हमारे आंखों का इम्पैक्ट पड़ता है
1: जी,
0: जो चिट्ठी है के बारे में। और एक इंतजार है जो हमारे और खूबसूरती बढ़ा देते हैं
1: जी। अच्छा मुनरिंदा, एक चीज पूछना चाहूंगी मैं कि अब आजकल तो लोगों से कनेक्ट करना काफी इजी हो गया है, तो पहले चिट्ठी के लिए जैसे हम कुछ लिख के देते थे, चिट्ठियां देते भेजते थे या फिर पोस्ट कार्ड भेजते थे, उसके बाद फिर उसका इंतजार करते थे कि कब आएगा रिप्लाई। अभी काफी आसान हो गया ये चीज सोशल मीडिया के जरिए और चैटिंग एप्स के जरिए। तो आपको क्या पसंद है, मतलब ये जो शॉर्टकट है इंतजार बिना किए फट से आंसर आ जाना, ये ज्यादा पसंद है या फिर चिट्ठियों वाला जो टाइम था वो ज्यादा पसंद है?
0: जो रिलेक्शनशिप से अभी ठीक है सोशल मीडिया का चिट्ठिया जो है, लेकिन मेरा ये आखिरी हिसाब है और जो कोशिश से मिलता है उसका दाम बहुत ज्यादा होता है, जो आसान से मिलता है उसका दाम कमी हो जाता है।
1: जी जी जी बिल्कुल,
0: ये तो मानना पड़ता है। लेकिन ये दो भाग जीवन से हमारे ईमेल ये का जो है
1: चैटिंग ऐप से जो अलग अलग
0: चैटिंग है, व्हाट्सएप का चैटिंग है, फेसबुक का चैटिंग है, इंस्टाग्राम है, तो जरूरत है ताल से ताल मिलाता है। लेकिन मेरा हिसाब से चिट्ठिया का जगह कोई नहीं था।
1: ठीक है चलिए, फिर चिट्ठियों की बातें याद करते हुए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, किसको याद करते हुए सुनना चाहेंगे ये गाना?
0: 1993 का फिल्म है जिसका वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स की फिल्म है अमित खान और गिरी चावला का
1: जी,
0: वो है हम है भाई प्यार।
1: ठीक है, उसमें
0: सभी बहुत सारे बच्चे हैं हमारे प्यारा सा बच्चे, और इसमें हमारे जूही चावला जी और अमित खान के लिए एक गाना है मुझसे मोहब्बत का इजहार ना करता काट के लड़का मुझे प्यार करता।
1: ओके,
0: ये गाना मेरा बहुत फेवरेट है मर्तानू और
1: ठीक है चलिए चलिए फिर। हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे आपको, ठीक है, थैंक यू सो मच और अच्छे से रहिएगा, गुड नाइट, मैं वापस मुलाकात होगी आपसे, बाय। तो चलिए हम है राही प्यार है से सुन लेते हैं, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती।

सीधे बढ़ते हैं दोस्तों अगले गाने की ओर, जिसे रिक्वेस्ट किया है सुप्रिया दी ने हावड़ा से। और चली चिट्ठियों की बातें हो रही, उन्होंने भी बातें की पर क्या कि ऑन एयर नहीं आई। सुप्रिया दी, नेक्स्ट टाइम ऑन एयर आना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल चलिए सुन लेते हैं उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना।

0: चुरी की घड़ी में 7:26 एग्जैक्टली और 26 सेकंड। तो चलिए हमारे अगले कॉलर भी हमसे जुड़ चुके हैं इंतजार में, तो देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: जी शुभजीत बोल रहा हूँ। बिल्कुल।
0: हाँ शुभजीत, कैसे हो? ऑल गुड?
1: हाँ ऑल गुड।
0: घर पे सब ठीक है? घर पे सब ठीक है?
1: बिल्कुल।
0: आर यू बैक टू योर नॉर्मल लाइफ?
1: यस, फ्रॉम नेक्स्ट वीक।
0: ओके गुड, ऑल द बेस्ट फ्रॉम अस।
1: थैंक यू।
0: यस,
1: आज का जो टॉपिक है
0: जी,
1: एक्चुअली आई एम क्वाइट ओल्ड स्कूल।
0: या मी टू।
1: मेरे लिए, हाँ मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि हमेशा मैंने क्या किया, दोस्तों को या फिर रिश्तेदारों को, मैक्सिमम माई कजिन, हाँ हम लोग इंटरेक्ट करते थे लेटर। उस जमाने में पोस्ट कार्ड और इनलैंड लेटर ये सब होता था।
0: जी जी।
1: तो इवन एक टाइम था जब आकाशवाणी में ही काफी सारे कॉन्टेस्ट उस समय होते थे, जहाँ पर हम लोग सेंड करते थे पोस्ट कार्ड, वंस अ वीक वो रिजल्ट निकलता था। तो दैट वॉज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। लेकिन आज तक भी क्योंकि हम लोग का

0: एक हैबिट हो गया था लिखने का
1: जी,
0: तो जब भी मैं किसी को व्हाट्सएप करता हूँ या एसएमएस करता हूँ वो इतना लंबा चौड़ा हो जाता था हिस्ट्री का आंसर की तरह, लेकिन जो चीज पुरानी है वो हमेशा गोल्डन है
1: जी।
0: चाहे आप कुछ भी देख लीजिए, किसी की जिंदगी का से जुड़ा हुआ जो भी चीजें हैं, हाँ इवन आप जब प्रोग्राम करती हैं, आप देखिए 90s के दौर में या 70s 80s के जो दौर के गाने हैं
1: जी,
0: आज तक लोग, हो सकता है क्योंकि चेंज इज कॉन्स्टेंट तो इवोल्यूशन तो होना ही है, वो अलग बात है, लेकिन वो गाने मतलब मेरे लिए एटलीस्ट मैं लिरिक्स भूलता ही नहीं, मतलब मैं अगर चाहूँ भी मेरे दिमाग से जाएगा।
1: एग्जैक्टली आज भी अंताक्षरी जब खेलते हैं तो पुराने गाने पहले याद आते हैं।
0: हाँ, पहले याद
1: अभी के गाने याद आते हैं, बाद में आते इवेंचुअली, लेकिन आते पुराने गाने ही हैं सबसे पहले।
0: बिल्कुल, और जो नए चीजें हैं जैसे कि आज मोबाइल हो गया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन हम लोग पुरानी चीजों को ना फेंक नहीं सकते, वो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ है और वो कभी रिप्लेस भी नहीं कर सकता। हम लोग सोचते हैं कि चलो आज तो ऐसा दौर आ गया है कि चिट्ठी पहुंचने में जो 10 दिन लगता था वो आज 10 सेकंड में चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन एक चिट्ठी लिखने के टाइम में जो इमोशंस जुड़ी रहती है उसमें, हर हर एक शब्द में, वो मुझे नहीं लगता है कि कभी कुछ रिप्लेस कर सकता है।
1: एग्जैक्टली।
0: और एआई के जमाने में तो हम लोग ज्यादा सोचते हैं कि चलो अब एआई लिख देगा तब।
1: हाँ, हमें क्या तकलीफ है कहीं ना कहीं हमारी जो लिखने की क्रिएटिविटी भी वो भी एआई के एआई पे ही बेस्ड हो गई है हमारी, बस इंस्ट्रक्शन दो एक खत्म।
0: लेकिन जब हम लोग चिट्ठी लिखते हैं तो उसमें जो रियल फील आता है
1: जी,
0: हाँ, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशी की चीजें हो कुछ भी, वो कभी एआई तो रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि एआई भी तो ह्यूमन ने ही बनाया, तो ह्यूमन से ही आया है। तो ये चीज, तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में कि चलो मैं ओल्ड स्कूल ही हूँ। काफी सारे मेरे दोस्त बोलते हैं तू कई जमाने में पढ़ा है, तो आई एम गुड विथ माई लाइफ, ओल्ड स्कूल लाइफ।
1: इट वॉज गुड एंड इट स्टिल इज गुड, आई बिलीव।
0: यस,
1: आई बिलीव।
0: और ऐसा नहीं कि मैं नए जमाने की चीजें को डिस्कार्ड कर देता हूँ, वैसा नहीं, मैं चलता हूँ उसके साथ।
1: we are millennials, we cannot discard these things.
0: Yes, we do discard things.
1: We have to adopt new things, but we are still there, हम लोग के बचपन में।
0: हाँ, और आपके प्रोग्राम में ये चीज रहता है, मैं देखा हूँ जब भी आप कॉलर से बात करती हैं या फिर कोई कोई टॉपिक होता है तो उसमें काफी सारी इमोशंस जुड़ी रहती है, और आपके वॉइस होता नहीं कि आरजेस में क्या है वॉइस मॉड्यूलेशन जो बहुत बड़ी चीजें हैं
1: जी,
0: तो उसमें क्या होता है कि ये इसमें काफी सारे इमोशंस जुड़ी रहते हैं जो उभर के आ जाता है आपके प्रोग्राम में। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू।
1: थैंक यू सो मच, वी आर आल्सो वेरी थैंकफुल टू यू। तो बताओ कौन सा गाना सुनना चाहोगे आप?
0: यस बॉस, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।
1: ओके फाइन, चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड मिलते हैं फिर। ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, गुड नाइट। कितना अजीब है ना दोस्तों, एक समय था जब घर से आई चिट्ठी पूरे परिवार को एक साथ बैठा देती थी, और आज हमारे पास वीडियो कॉल है, आवाज है, तस्वीर है, लेकिन फिर भी कई बार किसी पुराने कागज को हाथों में लेने का एहसास ही अलग होता है, क्योंकि चिट्ठी में सिर्फ शब्द नहीं होते थे, उसमें लिखने वाले की लिखावट भी होती थी। किसी की लिखावट देखकर ही पहचान हो जाती थी कि ये चिट्ठी किसकी है, और बॉलीवुड ने टाकिए को भी अपनी कहानियों में खूब जगह दी है। बात करेंगे, पर उससे पहले सुन लेंगे शुभजीत ने जो गाना रिक्वेस्ट किया है, यस बॉस का उस गाने को।

0: होम स्टूडियो की घड़ी में अब हो गया है 7:36 और हमारे अगले कॉलर को फटाफट ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो
1: हेलो पापिया जी, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: और सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ।
0: ओके, नाम बताइए श्याम जी, अपना नाम बताइए।
1: होती है हलचल, प्यार से लोग कहते हैं मुझे श्याम कुमार चंचल।
0: जी श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक के सुरों की महफिल में।
1: आपका भी बहुत स्वागत है,
0: थैंक यू। बताइए घर परिवार में सब ठीक है?
1: हाँ, घर परिवार में मेरे सब ठीक हैं और आपके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अच्छी हैं और परिवार में भी सब अच्छे होंगे।
0: बिल्कुल, आप लोगों का इतना प्यार मिलता है तो अच्छा होना बिल्कुल लाजमी है ना?
1: जी बिल्कुल।
0: बताइए कैसा चल रहा है सब कुछ और आज के विषय के बारे में आप क्या बताएंगे? आप तो
1: मैं आपके विषय में कहना चाहूँगा पापिया जी।
0: जी,
1: मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है और कम से कम तो 35 साल।
0: अच्छा,
1: तो वो हमारे चैनल का एक कॉलर भी है
0: जी,
1: जो गुड़ाप में रहता है, बर्दवान गुड़ाप।
0: ओके ओके,
1: उसका नाम है राम बालक दास।
0: अच्छा,
1: तो उसका आज भी जन्मदिन का कार्ड भेजा हुआ था, एक पोस्ट कार्ड मेरे पास सुरक्षित है अभी भी। मैंने बहुत उसे संभाल के रखा है। उसके बर्थडे पर मैं गया था उसके पास मिलने के लिए।
0: अच्छा, ओके।
1: तो ये सब जो चीज है पुरानी मैंने अपने पास संभाल के रखी है और अभी भी मैं उसको याद करता हूँ। आपको आता नहीं है ऑनलाइन, लेकिन मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा आपके माध्यम से कि वो भी रेडियो पर आए और बहुत अच्छा कॉलर है।
0: अच्छा,
1: और आपके जो आरजे हैं उसको सब बालक कह के पुकारते थे।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो उसकी याद आती है कभी कभी, वो पोस्ट कार्ड दोबारा पढ़ता हूँ।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं हमारी तरफ से राम बालक दास जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ऑन एयर आए, हमारे साथ बातें करें और साथ ही साथ श्याम जी से भी कनेक्ट करें, बड़ा मजा आएगा, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो चलिए बताइए श्याम जी, कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगे आप?
1: मैंने आपको बता दिया, बजा दीजिए आप।
0: ओके, सीक्रेट सीक्रेट, ठीक है। चलिए बचाते हैं। और किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे ये गाना स्पेसिफिकली?
1: ये खासकर मैं राम बालक दास और बाली में हमारे एक मित्र हैं किशोर दा, उनके अच्छा, लिए।
0: ओके ओके, ठीक है, चलिए चलिए सुनते हैं फिर ये गाना। थैंक यू सो मच, आराम से रहिएगा, मिलते हैं फिर आपसे। तो चलिए सुन लेते हैं उन्होंने जो रिक्वेस्ट किया था वो गाना, अलका यानी और उदित नारायण की आवाज में, दिल है तुम्हारा फिल्म का ये गाना।

दोस्तों, हिंदी सिनेमा ने प्रेम पत्रों को भी कई यादगार प्रसंग दिए हैं। फिल्म सरस्वती चंद्र के प्रसंग में फूल तुम्हें भेजा है खत में इसका एक खूबसूरत उदाहरण है। गीत लिखा था इंदीवर ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था और इसे मुकेश तथा लता मंगेशकर ने आवाजी थी। इसका विचार कितना सुंदर है ना, चिट्ठी में फूल भेजना। आज हम तस्वीर भेजते हैं, इमोजी भेजते हैं, लेकिन कभी फूल भी चिट्ठी के साथ भेजे जाते थे। और चिट्ठियों की दुनिया सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं थी। सबसे भावुक चिट्ठियां अक्सर उन लोगों की होती थी जो अपने घर से दूर रहते थे। सैनिकों की चिट्ठियां इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। फिलहाल राजकुमार जी ने कॉल किया था नरेंद्रपुर से और सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी एवं साथियों की आवाज में बड़ी देर भई नंदलाल। तो चलिए सुन लेते हैं ये गीत फिल्म खानदान से और सुनाना चाहते हैं हमारे सभी श्रोताओं को। तो फिलहाल सुनते हैं ये गाना, एंजॉय करते हैं और फिर कॉल्स लेते हैं आपके।

0: तो चलते चलते दोस्तों कार्यक्रम की ऑलमोस्ट अंत तक मतलब पहले घंटे के अंत तक हम पहुंच चुके हैं और इतने प्यारे प्यारे कॉल्स आ रहे हैं कि क्या ही बताऊं, मतलब दिल छू जा रहा है आपकी बातें सुन के। फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छाया लोक में।
1: হ্যাঁ দিদি, আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা কুলিয়ারদানি বাগান পাড় থেকে কোষ প্রামাণিক কথা বলছি ম্যাম।
0: নমস্কার, বহুত বহুত স্বাগত, পহলি বার আপসে বাত হো রহি হ্যায় আর কেসে হ্যায় আপ, ঘর পরিবার মে সব ঠিক হ্যায়?
1: হ্যাঁ সব সবাই ভালো আছে।
0: আপ বেঙ্গল মে বলিয়ে কোই প্রবলেম নেই হ্যায়।
1: দিদি সত্যি মানে এই অনুষ্ঠান এত ভালো হয় এবং আমাদের অনেক দূর দূর থেকে অনেক শ্রোতারা শোনে। আমি অনেক বছর পরে পেয়েছি, প্রায় চার বছর পরে আপনি অন্য ফোনটা ফোন আমি পেয়েছি এবং দিদি যিনি আছেন তার সঙ্গে কথা বলে খুব ভালো লাগছে। এবং আমি দুটো গানের রিকোয়েস্ট করব, আমার প্রিয় শিল্পী অনুরাধা পড়োয়াল তার একটি গান আছে সাহেবা ছাছবি থেকে, তেরি সাহেবা তেরি সাহেবা এই গানটি, আরেকটা তা না হলে আরেকটা হচ্ছে সাজন ছাছবি থেকে বহুত প্যার কর দে তুমকো সনম, এই গানটি শুনতে আমি চাইছি। ওকে অনুরাধা পড়োয়াল দি
0: তো কুছ সুনাওঙ্গি জরুর আপকা রিকোয়েস্ট কে ওয়া গানা, এক সওয়াল জরুর পুছুঙ্গি মে, লেকিন পুছু
1: बोली।
0: सवाल ये है कि चिट्ठियों को लेकर बातें हो रही हैं, आपने जरूर सुना होगा प्रोग्राम में है ना, चिट्ठियों को लेकर है ना, तो आपके लिए कौन सा प्रेफरेबल है, चिट्ठियां लिखना पसंद है आपको या फिर आजकल की सोशल मीडिया में कनेक्ट करना लोगों से, वो ज्यादा पसंद है, क्या पसंद है ज्यादा?
1: सही अच्छे लगते हैं सोशल मीडिया से और फोन को लिखने के तो बहुत अच्छा है, लेकिन
0: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा बिल्कुल, और अपनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है, वापस बातें होंगी आपसे। ओके नहीं नहीं, अगले प्रोग्राम में ही बातें होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जरूर कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल सुनाएंगे आपको, अब भी चलाते हैं, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना जिन्होंने रिक्वेस्ट किया, अनुराधा पौडवाल और ज्वाली मुखर्जी की आवाज में।

तो चलते चलते दोस्तों समय कब बीता इसका पता ही नहीं चला। आज सुरों की महफिल में बातें हो रही थी छठियों को लेकर, और ढेर सारी बातें की, ढेर सारी दिल से बातें की, ऐसे लोगों से भी जुड़े जो बहुत सालों से जुड़ना चाहते थे, और ऐसे लोगों से भी जो हमेशा हमसे जुड़े हुए हैं। फिलहाल के लिए जाने का वक्त हो चला है मेरा, और जाते जाते शांतनु घोष जी ने कॉल किया था बावड़िया बाउल खाली से, उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना ज़रूर बजाऊँगी मैं। और अच्छे से रहिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जुड़े रहिए 107 एफएम रेनबो के साथ। अब 8 बजे से माइक की कमान पकड़ेंगे रोशन मुरार का, तो चलिए जुड़े रहिएगा उनके साथ भी। मैं पापिया लेती हूँ फिलहाल आपसे विदा, किसी और दिन किसी और समय कुछ और बातों और गीतों के साथ ज़रूर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, और ख्याल रखिएगा अपना और अपनों का। फिलहाल के लिए छोड़े जा रही हूँ कुमार शानू की आवाज़ में ये गाना।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।
1: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। 107 FM रेनबो पर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, आपका रेडियो वाला दोस्त, लेकर कार्यक्रम छायालोक। क्यों है ना तैयार आप अपनी पसंदीदा गीतों के साथ?

वैसे दोस्तों यहाँ आपको हंसते हुए ही आना है और हंसते हुए ही जाना है, लेकिन नंबर तो पहले जान लीजिए जनाब। नंबर है हमारा 2213-1341, 2213-1341। अभी से लेकर 9 बजे तक आपका रेडियो वाला दोस्त रोशन मुरारका आपके साथ रहेगा, आपकी फरमाइश के गीत सुनवाएगा। नंबर आपको डायल करना है 2213-1341, और फिलहाल ये गीत।

0: चलिए दोस्तों देखते हैं, कॉलर फ्रेंड शायद लाइन पे आ चुके हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो, गुड इवनिंग जसवंत जी, मैं प्रशांत प्रामाणिक बोल रहा हूँ, बावली बरपुल गनियापाड़ा से।
0: बताइए जनाब।
1: मुझे नाजाज मूवी से क्या तुम मुझसे प्यार करते हो इस गीत को सुनना है। हो सके तो इस गीत हो सके तो बहुत अच्छा होगा, नहीं हो सके तो और एक गीत बोलना चाहता हूँ। फूला कांटे से मैंने प्यार से तुम्हें से किया है, इस गीत को सुनना चाहते हैं। और इस वक्त जितने भी दोस्त एफएम रेनबो सुन रहे हैं सभी को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: और जो नहीं सुन रहे हैं उनको क्या बोलेंगे आप?
1: वो जो जो जो नहीं सुन रहा है उसके लिए क्या बोल रहा है, बेनासे भी है, मतलब नहीं सुन पाए इस गीत को।
0: ये बात है ना, नहीं तो उन पर आप गुस्सा तो नहीं होंगे?
1: नहीं उसका तो नसीब ही खराब है कि इतना अच्छा गाना सुनने से मिस हो जाएगा।
0: ओहो क्या बात है ना। हाँ, ये बात सही है कि इतना अच्छा गाना मिस हो जाएगा, उनको नसीब खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है बंधु। ठीक है, गाना तो सुनाते ही रहते हैं, है ना।
1: बहुत दिन के बाद आपको और बहुत दिन के बाद आपसे बात हो रहा है।
0: तो आप भाई कॉल नहीं करेंगे तो बात कैसे होगी, ये बताइए।
1: आप अच्छा है ना?
0: मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन आप बताइए, आप अगर फोन नहीं करेंगे हमारे कार्यक्रम में तो आपसे बात कैसे होगी?
1: अभी तो मैं काम के सिलसिले में थोड़ा वक्त कम मिलता है प्रोग्राम सुनने में और फोन करने में। समय मिलता है तब सुनते हूँ और फोन भी करता हूँ।
0: क्या बात है, चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
1: ठीक है ठीक है।
2: मैंने क्या

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक

0: चले दोस्तों, बत्ती बता रही है कि कोई कॉलर फ्रेंड हाजिर हैं, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो।
1: हाँ हेलो भैया, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, अरे भाई कैसे हैं?
1: हाँ सर अच्छा है, सब बढ़िया है सर।
0: बोलिए बोलिए।
1: हाँ बोल रहे हैं सर, मैंने वो शोले फिल्म का गाना हम सुनने मांग रहा है, ये दोस्ती ना टूटे दोस्ती।
0: ना ना ना ना, पहले आप ठीक से गा के बताइए, ऐसे नहीं होगा, ये ना टूटे आप गड़बड़ सर में बता रहे हैं भाई साहब।
1: अच्छा अच्छा, ये दोस्ती हम ना तोड़ेंगे,
0: हम नहीं तोड़ेंगे। हाँ
1: हाँ, हम नहीं तोड़ेंगे भैया।
0: क्यों नहीं तोड़ेंगे ये बताइए।
1: कहे कि दोस्ती अच्छा होता है, दोस्ती में सब कुछ रहता है, प्यार मोहब्बत सब कुछ रहता है, उसी लिए दोस्ती हम तोड़ने नहीं मांगता है।
0: क्या बात है
1: कि हाँ भैया, हम लोग एक साथ में रहने मांगता है, कहे कि फौजी आदमी तो एक साथ में रहने से बॉर्डर में भी काम आता है, गाना सुन के हम लोग प्यार में मस्त हो जाता है।
0: चलिए ठीक है, तो प्यार में मस्त हो जाइए आप, आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं।
1: हाँ ठीक है भैया, नमस्कार
0: नमस्कार।

दोस्तों आपको भी दोस्ती नहीं तोड़ रही है हमें हमारे एफएम रेनबो से, और फिलहाल छैलो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपने रेडियो वाले दोस्त रोशन मरारका के साथ। नंबर मिलाइए और अपनी फरमाइश लेकर हमारे साथ आइए। नंबर है हमारा 2213-1341।

पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला। आप सुन रहे हैं छायालोक, छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक, छायालोक।

0: हेलो
1: हेलो
0: हाँ जी,
1: हम चितुरा से अशोक कर बोल रहे हैं।
0: बोलिए भाई, कैसे हैं?
1: अच्छा है, ठीक ही है।
0: ठीक ही है और अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे नहीं है क्या?
1: ना बहुत अच्छा, मतलब बुढ़ा हो गया ना।
0: क्या हो गया?
1: बुढ़ा हो गया, 64 हो रहा है।
0: अरे भाई, आदमी बुढ़ा थोड़ी होता है भाई। आज जिस दिन सोच लेंगे बुढ़ा हो गया, उस दिन बुढ़ा हो गया है कि नहीं, बताइए।
1: आप ठीक है ना?
0: हाँ मैं अच्छा हूँ, बताइए।
1: ठीक है, हमको गाना है आशा फिल्म से, आशा ओके श्रावल।
0: अच्छा, ये फिल्म देखी है आपने?
1: हाँ हाँ, बहुत देखा है, जितेंद्र का फिल्म हो। पहले तो इसको फिल्म ही देखता था, अभी तो फिल्म देखना छोड़ दिया।
0: क्यों क्यों फिल्म देखना छोड़ दिया आपने?
1: अभी देखता नहीं है, टीवी में जो सिनेमा देखता है अभी, तो वही हमको पसंद नहीं है।
0: अरे तो आप पुरानी फिल्में देखिए ना, पुरानी फिल्में भी तो आप देख ही सकते हैं।
1: हाँ, पुराना फिल्म ही देखा है।

0: बहुत देखा जितेंद्र इसका पूर सब लोग को फिल्म।
1: अच्छा कौन सी फिल्म आपको सबसे अच्छी लगी आज तक जितनी फिल्में आपने देखी?
0: हमारा जितेंद्र के सबसे अच्छा है तोहफा फिल्म लगा है।
1: लेकिन आपने तोहफा फिल्म के गाने की फरमाइश क्यों नहीं की?
0: नहीं किया तो एक ही तो बात है, जितेंद्र के गाना ही तो हम चॉइस किया।
1: अच्छा ये बात है ना, मतलब जितेंद्र आपके फेवरेट? चलिए ठीक है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत।
0: ठीक
1: ऐसा ही फोन करते रहिएगा,
0: आप भी याद कर रहे हैं।
1: धन्यवाद।

0: पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, आप सुन रहे हैं छायालोक। छायालोक 107 FM रेनबो पर। पुराने दिनों का सफर, पुराने गीतों का सिलसिला, छायालोक। छायालोक
1: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम छायालोक में आपका दोस्त रोशन मुरारकार अभी से लेकर और 15 मिनट 9 बजे तक आपके साथ रहेगा। आप अगर अपने पसंद के गीत सुनना चाहते हैं तो नंबर डायल करना होगा 2213-1341। एक बार नंबर फिर से बता दूं, 2213-1341। आइए फटाफट, क्योंकि वक्त बहुत ही कम है। क्यों है ना,

0: चलिए दोस्तों, कॉलर फ्रेंड हाजिर है, उनसे बातें कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो दर्शन जी, नमस्ते।
0: नमस्ते नमस्ते।
1: मैं बेलगरिया से शुभजीत बोल रहा हूँ।
0: बोलिए जनाब, कैसे हैं?
1: ठीक हो, आप कैसे हैं?
0: मैं तो अच्छा हूँ भाई साहब, आप ठीक क्यों हैं? अच्छे क्यों नहीं हैं?
1: अच्छा अच्छे हैं, हाँ, ऑल इज वेल।
0: ऑल इज वेल, हाँ, बताइए।
1: तो आज मुझे लता मंगेशकर का एक गाना सुनना है, छोटी सी बात, न जाने क्यों। उस मूवी मुझे इतना प्यारा है वो मूवी, इतना उस जमाने में जबकि अमोल पालेकर का काफी सारा फिल्म में देखा हूँ, इतना सॉफ्ट होता था। मतलब उसमें जो रोमांस भी है ना उस जमाने का, उसका मिठास ही अलग था। और काफी कुछ चीज अनकही रह जाती थी जो ऑडियंस समझ जाते थे बिना कुछ बोले।
0: मतलब अर्ध सत्य है ना,
1: अर्ध सत्य जी। और इन दोनों की जो जोड़ी थी, एक्ट्रेस का नाम शायद विद्या सिंह या कोई होगा, याद नहीं पड़
0: रहा। ठीक है,
1: हाँ, अमोल पालेकर थे। और उन दोनों का जो अनकही रोमांस जो कह ना सके वैसा एक। और मुझे याद है ये जो फिल्म, जबकि ये पिक्चराइज हो रहा था उस गाने का, तो ये जो एक्ट्रेस विद्या, उसका जो कैरेक्टर है वो बहुत सेमी सेमी सी रस्ते से जा रही थी और सोच रही थी कि जिंदगी क्या कुछ दिखा देता है इंसान को। और मुझे बहुत प्यार लगता है ये गाना। तो
0: अच्छा,
1: आज
0: ये बताइए, आपकी बातों से तो लगता है आप इस जमाने के हैं।
1: मैं तो मैं एक्चुअली 90s का ही हूँ।
0: हाँ हाँ, लेकिन 90s के ही है, लेकिन 90s वाले, मतलब 1975 की फिल्म को याद कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मतलब
1: हाँ थोड़ा सा अटपटा लगेगा।
0: अच्छी बात है कि आप याद रखते हैं, बताइए।
1: क्योंकि एक्चुअली क्या हुआ ना, बचपन से पापा हमेशा हेमंत कुमार, किशोर कुमार, ये गाना सुन के मैं बड़ा हुआ हूँ। इवन मेरे टाइम में जबकि ऑलरेडी सैटेलाइट टेलीविजन आ चुका था, फिर भी मेरे पापा हमेशा रेडियो चलाते थे, तो गाना बजता था कैसेट, उस समय तो कैसेट प्लेयर था।
0: अच्छा, आपको याद है अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा के साथ उस फिल्म में असरानी भी थे?
1: जी जी जी।
0: चलिए, उस फिल्म की खासियत ये थी

0: भाई साहब कि वो फिल्म का मतलब सार ये था कि प्यार से मैं सिर्फ दिखावा या चालाकी नहीं चलती, आत्मविश्वास, सच्चाई और अपने व्यक्तित्व को स्वीकार करना ज्यादा महत्वपूर्ण है ना।
1: और वो टाइटल भी कितना एप्रोप्रिएट था, छोटी सी बात।
0: चलिए ठीक है, वक्त बहुत कम है,
1: बहुत बहुत
0: सुनवाते हैं। हाँ जी,
1: थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।

दोस्तों, अगर सच माने तो जिंदगी को अगर एक खूबसूरत सफर माने ना, तो हर मोड़ पर एक नई धुन, हर कदम पर एक नया सुर और हर पल में एक नया डांस छुपा है। स्टूडियो की घड़ी आपसे इजाजत लेने को कर रही है, तो कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनिए और आपके रेडियो वाले दोस्त रोशन मुरारका को यहीं आज्ञा दीजिए। मिलूंगा फिर किसी अगली शाम लेकर कार्यक्रम छाया लोक। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट,

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी?